0: गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुई लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: www.radiomirchi.in पर। हर घर सूर्य
1: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ।

0: अतः मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देश भर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है।

0: कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
2: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में

0: जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बिछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोक झोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ते की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू मूव द केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग इन राज्यसभा टुडे टू ऑल्टर द नेम ऑफ केरला। In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan to flag off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam in a short while. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand.

0: लाई समान अवसर र उचित मार्गदर्शन प्रदान गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। यसैले आजको आवश्यकता भनेकै सक्षम, शिक्षित, सिपयुक्त, जिम्मेवार र सकारात्मक सोच भएका युवा शक्तिको विकास गर्नु हो।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी खरसाङ हो। अब प्रस्तुत छ सफ्टवेयर कार्यक्रम अन्तर्गत एक विशेष रूपक हाम्रा स्वाधीनता सेनानी रामसिंह ठकुरी अनि आयन ए रूपकका लेखक विनोद कुमार छेत्री, प्रस्तोता पूर्ण गुरुङ।

पल्टनी हौलदार दिलीप सिंह ठकुरी का जेठो छोरो भनेर जानिने स्वतंत्रता सेनानी रामसिंह ठकुरी को जन्म 15 अगस्त 1914 को दिन हिमाचल प्रदेश को कांगड़ा जिला अंतर्गत पर्ने सल्ला

0: भारतीय स्वाधीनता संग्राममा लागेका राजबिहारी बोसले भारतलाई स्वाधीन गराउने उद्देश्य लिएर आजाद हिन्द संघ नामक एउटा क्रान्तिकारी संगठन बनाएका थिए।
1: आजाद हिन्द फौज अपने मातृभूमि की ओर कूच कर रही है।
2: हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम बिगड़ी हिंद बनाएंगे। अब फौज बन कर रहना है, दुख दर्द मुझे बसना है। अब फौज बन कर रहना है, दुख दर्द मुझे बसना है। सुभाष का

0: यहाँले अहिले सुन्नुभयो समूह स्वरमा देशभक्ति गीत, जसमा संगीत दिनुभएको थियो मोहन प्रधानले। र अब आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको हिन्दी समाचारसम्म प्रसारण गरी सुनाइरहेछौं।
1: जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रही। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती है वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक साधन है। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने

0: कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार किया जा चुका है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने आया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कहा है कि आज के युवाओं के सपने कल के भारत की नींव है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा आज देश की ताकत है। उन्होंने इस दिन को देश के युवाओं की क्षमता और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का जश्न मनाने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्होंने भारत के लिए जो महत्वाकांक्षी सपना देखा था वो आज साकार हुआ है। श्री सिंह ने डॉक्टर साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक बताया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 381 अंक गिरकर 77,773 पर, जबकि निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,360 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घुँडाको दुखाइले तपाईँको दैनिक जीवनलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। हिँड्न सिडी चढ्न वा लामो समय उभिन समस्या भइरहेको छ। घुँडाको दुखाइका कारण तपाईँको सक्रिय जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको छ। अब चिन्ता नगर्नुहोस्। घुँडाको दुखाइ, घुँडा प्रत्यारोपण, रोबोटिक घुँडा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया, उपचारका विकल्प, सावधानी र शल्यक्रिया पछिको पुनर्स्थापनाका विषयमा विशेषज्ञ चिकित्सकसित प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने अवसर रहेको छ। आज 12 तारीक अगस्त 2026 बेलुकी 5:05 आकाशवाणी खरसाङको स्वास्थ्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवनमा। यस समय आकाशवाणी खरसाङको स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ अर्थोपेडिक तथा ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट विशेषज्ञ डाक्टर रविशंकर माझी र हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 0354299917। समय 5:05 आज 12 तारिक बेलुकी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन AIPSI के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि AIPSI मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली।

0: गए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानिंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारूफ को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानिंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ठंडा फो मस्त से फुशे छि से अंत पता लेमी कहीं यो कोला तम जो शिस यूं जो शुगिन सर ना थाने की जो शि मिक्तों लायो की कहीं जमनी गया यूं जो ला छे शिंबा लेमी की कहीं यो दे कोला चिका शि शुजु इन लेमी के कांयो सेवा जुशी देई छेबा निंदु शिक शुबा इना तेने केलो चुपगे ने ग्यांपो लोटां चुकचु मास्वें पाल की मिवो नम लेगा छे मातूपा निपा लुटोप तां शेयों छेदेन योय क्यां जुचें थुमा लातें ने लेगा मातोपा हम लेमे लुपे मिवो नम की ग्याहाब की पेंजो तां चुचो की शिदे ला कांयो ता कांये छेबा शिक la lemi ge kanyo she ngunji che mi des che cha lemi ge lu pe mi wo nam ki lo che la ten ne mo nam ki na shun lemi ge kanyo she she na mo wo pa mi ta kanyo de jam ni ge kha kham sa che shin ba shi ki du pen jo ri ne che ba nam ge kanyo de ye chung gen tang tu yang je cham lu pa 대신 남두의 강기

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्

0: संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। ब्यूरो हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
3: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।

हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।

0: रहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
1: In Tiranga Yatras, bike and cycle rallies, cultural programs and concerts. Each activity has a different form, but the sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले प्रदर्शनियां मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली चित्रकला निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
0: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावुखेर सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। 95 चालों तक चले इस मैच में

प्रज्ञानंदा ने शुरुआत से अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा के दो मैचों में डेढ़ अंक हो गए हैं। अभी-अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंधारोप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यो प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको। अबको केही क्षण रिले गरी सुनाउनेछौ आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार।
1: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। संसद परिसर में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री के किसी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें केवल जवाबदेही चाहिए। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने व्यापक विचार

0: बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने तथा भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग $4 trillion की है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौते 38 विकसित देशों को कवर करते हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथी हाथियों की रक्षा उनके आवासों के संरक्षण और हाथियों तथा समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में हाथियों की सुरक्षा के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और AI आधारित अलर्ट लोगों और हाथियों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली बाढ़ और तथा किसानों को फसल नुकसान के लिए समय पर मुआवजा देने संबंधी उपाय किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: खरसाङबाट बोलिरहेका छौं FM 103.5 मेगाहर्जमा श्रोताहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ दार्जिलिङ FM 102.2 मेगाहर्ज न्यूज अन एयर एप अनि OTT वेब प्लेटफर्ममा पनि। समय साँझको 5:05 भइरहेछ। अब प्रस्तुत छ स्वस्थ जीवन सम्बन्धी फोन इन कार्यक्रम। आज हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक डाक्टर रवि शङ्कर।

0: आएको जसको फोन आउँछ हामी उठाउने नै छौँ। र आदरणीय श्रोता, हामी यहाँलाई बताउँ, हामी घोडाको दुखाइ, घोडा प्रत्यारोपण, रोबोटिक घोडा प्रत्यारोपण, शल्यक्रिया, उपचारका विकल्प, सावधानी र शल्यक्रियापछिको पुनर्स्थापना विषयमा हामी डाक्टर साहबसँग चर्चा गर्नेछौँ। र तपाईँले यी विषयहरूमा आफ्ना समस्याहरू जे जति पनि छन् तपाईँले सोझै फोन गरेर हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित अर्थोपेडिक अनि जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट विशेषज्ञ डाक्टर रविशंकर माझीसँग तपाईँले आफ्नो समस्या फोन मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। फोन मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्ना कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ, कुनै पनि समस्याहरू छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई फोन नम्बर अघि पनि बताइसकेको छु, पुनः एकपल्ट यो नम्बर यहाँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु, 0354-2999-2999-317। फोन नोट गर्नुभयो होला, फेरि म एकपल्ट भन्दैछु, 0354-2999-2999-317 र यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हामी बात गर्नेछौँ डाक्टर साहबसँग। र सर, आपको स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डाक्टर साहब। आजकल घुटनों का जो दर्द बहुत से लोगों को सामान्य समस्या बन गया है, तो घुटने में दर्द होने का मुख्य कारण क्या क्या है, क्यों घुटनों में दर्द होता है?
1: घुटने में जो दर्द होता है मेनली अगर उम्र ज्यादा है, आफ्टर 45 इयर्स 50 इयर्स, तो क्या होता है, हमारे जो घुटने के दोनों हड्डियां है जिसको हम लोग फीमर एंड टिबिया बोन बोलते हैं, ऊपर की थाई जांग की हड्डी और पैर की हड्डी, उसके बीच में एक गद्दी होता है, वो गद्दी धीरे धीरे धीरे धीरे घिस जाता है। वो गद्दी खत्म हो जाने के बाद ऊपर का हड्डी और नीचे का हड्डी में आपस में घिसता है, तो वो घिसने के लिए हमारा पैर भी टेढ़ा हो जाता है और हमको जो पेशेंट को जो दर्द होता है उसके लिए होता है।
0: तो हमेशा फोन कॉल से हमें बात करने से। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, हजुर को बोल्नु भा?
2: सर बाबू बोल्नु भा? जी सर, सर बाबू बोल्नु
0: भा? हजुर हजुर हजुर हजुर। तपाईको समस्या बताउनुहोस्।
2: सर मेरो समस्या छ स्कोलियो सिस्टम।
0: हजुर, स्कोलियो सिस्टम? हाँ जी
2: सर, स्कोलियो सिस्टम खुट्टाको नीला लाइनको प्रब्लम छ।
0: तपाईँ हिन्दीमा बोल्न सक्नुहुन्छ?
2: जी सर।
0: हजुर, हिन्दीमा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब।
2: डाक्टर साहब, मेरा स्कोलियो सिस्टम लम्बर
1: स्कोलियो सिस्टम
2: बताइए।
1: किसका प्रॉब्लम? सॉरी,
2: बाया प्रॉब्लम में, बाया पैर में सर।
1: ओके,
2: हिल एंकल प्रॉब्लम सर।
1: ओके,
2: इसको लंबर इसको लंबर और बाया पैर में हिल एंकल प्रॉब्लम सर।
1: अगर आपका स्कोलियोसिस है वो मेनली एक स्पाइन प्रॉब्लम है। आपका उम्र कितना है, एज कितना है?
2: 60 सर।
1: 60, तो अगर स्कोलियोसिस है तो मेनली जो एंकल या पैरों में जो दर्द होता है वो नर्व कंप्रेशन, आपका नस दबता है कमर में, आपका स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ा हो जाने के कारण आपका नस दबता है, इसलिए मेनली ये पेन होता है। अब स्कोलियोसिस के लिए आपको एक्चुअली एक स्पाइनल सर्जन या न्यूरोसर्जन से दिखा के उसका प्रॉपर एक्सरे करके कितना टेढ़ा है आपका स्पाइन वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर जांच चाहिए जो एक स्पाइनल सर्जन या आपको न्यूरो सर्जन से थोड़ा कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए।
2: सर तो
1: आपको चेक करना ही पड़ेगा। एक बेल्ट पे मिलता है, बेल्ट पहन के अगर आपको आराम मिल रहा है तो उसको यूज कर सकते हैं, टेलर्स ब्रेस बोल के एक बेल्ट मिलता है उसको यूज कर सकते हैं, टेलर्स ब्रेस बोलते हैं उसको, तो उसको यूज करके अगर थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि स्कोलियोसिस एक स्पाइनल

0: टेढ़ा हो जाने का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपरली जांच करना बहुत जरूरी है कि कितना टेढ़ा हो रहा है एंड कितना नर्व कंप्रेशन या वगैरह है, आपका नस कितना दब रहा है जिसके लिए आपको पेन हो रहा है। बिना जांच किए ऐसे दवाई वगैरह से ठीक होने का चीज नहीं है बिना जांच किए, इसलिए और न्यूरोसर्जन से कंसल्टेशन जरूरी है। सर्जरी होता है, जरूर होता है इसके लिए भी, लेकिन वो स्पाइनल सर्जन या न्यूरोसर्जन करते हैं, वो हमारा स्पेशलिटी एक्चुअली नहीं है।
1: अच्छा है सर। हाँ अच्छा, इसको सर्जरी सर।
2: हेलो, के भन्नुहुँदैछ?
1: हजुर
2: सर्जरी गर्नु सकिन्छ भन्नुहुँदैछ उहाँले, तर तपाईँले न्युरोसर्जनसँग सम्पर्क गर्नु भन्नुहुँदैछ। न्युरोसर्जन
1: पहिला सम्पर्क थियो सर।
2: हजुर
1: अहिले सम्पर्क गर्न सक्दिनँ।
2: हजुर हजुर हजुर, यहाँले चाहिँ भन्नुहुँदैछ उहाँको यो जुन चाहिँ तपाईँको बिमारी छ उहाँको विषय रहेन त्यो, र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले न्युरो सर्जनसँग नै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ सुझाव दिनु भइरहेको छ। हुन्छ हवस्,
1: धन्यवाद।
2: हवस् धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ एकजना श्रोता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सलबरीबाट। सर हम बात कर रहे थे तो घुटनों का सामान्य जो दर्द और किसी को गंभीर समस्या या बीमारी के संकेत में अंतर कैसे पहचान जा सकता है?
0: आपका पैर धीरे धीरे टेढ़ा होते रहेगा, अगर आपको अर्थराइटिस है घुटनों में तो पैर धीरे धीरे और टेढ़ा होते रहेगा, आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होगी, आपको जमीन पे बैठने में उठने में तकलीफ होगी, और घुटनों से आवाज़ आ सकता है आपको, आवाज़ में हड्डियाँ घिसने का आवाज़ आएगा, सीढ़ी चढ़ना उतरना जमीन पे बैठना ये सब बहुत तकलीफदायक होगा। धीरे धीरे अगर अर्थराइटिस जितना बढ़ेगा पैर उतना ही टेढ़ा होता रहेगा एंड स्लोली ईच स्टेप में पेन होते रहेगा।
2: हाँ फिर फोन एटा फोन आई हम फोन रिसीव करने। हेलो,
3: हड्डियाँ घिसने का आवाज आएगा, सीढ़ी चढ़ना उतरना,
2: हेलो
3: ये सब बहुत तकलीफदायक होगा।
2: हेलो हजुर, को बोल्नुहुँदैछ? हजुर हजुर भन्नुहोस्। हजुर तपाईँको समस्या बताउनुहोस्। हेलो,
1: मेरो यहाँ सिस्टरको अलिक समस्या छ तपाईँको।
2: हजुर के को भन्नुभयो?
1: घुट्नेको
2: घुँडाको घुँडाको हजुर
1: उठ्ने बसो प्रब्लम हुन्छ, विशेष कालो हिँड्नु हिँड्नु
2: तीन चार साल से हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं चल पा रहे। तो भन्नुस तपाईले डाक्टर देखाउनु भएको थियो?
1: दुई तीन डाक्टर को देखाई सके, आफ्नो डाक्टरको
2: हजुर ठिक भएको छैन, तपाईँको त्यो घुँडा दुख्ने समस्या अहिले पनि छ, तिन चार सालदेखि छ। तपाईँको उमेर पनि बताइदिनुहोस् त। सुन्नुहोस् डाक्टरको
0: तपाईँलाई
2: हिन्दी बुझ्नुहुन्छ?
0: तो आपका जो घुटने का दर्द है वो एक्चुअली हड्डी घिसने के लिए हो सकता है, ये एज में बहुत कॉमन है आपका बीच का गद्दी खत्म हो जाने के लिए। अभी अगर आपका हड्डियां घिस रही है तो कोई भी दवाई इंजेक्शन वगैरह से आपको ये चीज वापस नहीं आएगा, जो गद्दी आपका खत्म हो चुका है वो गद्दी वापस आने के लिए कोई इंजेक्शन दवाई वगैरह कुछ नहीं है जिसके लिए वो वापस आ सके। तो इसके लिए उपाय अल्टीमेटली उपाय सर्जरी है, लेकिन सर्जरी में भी हम लोग दो तरह का अभी सर्जरी करते हैं एक्चुअली, नहीं रिप्लेसमेंट या घुटना बदलने का जो ऑपरेशन है वही हमेशा नहीं लगता है, वो डिपेंड करता है स्टेज पे। अगर आपका अर्थराइटिस अर्ली स्टेजेस पे है और सिर्फ घुटने के अंदर के तरफ दर्द होता है तो अभी हम लोग घुटना बचाने का ऑपरेशन भी करते हैं, तो जिसमें आपका पूरा घुटना बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ जहाँ पे दर्द है जो गद्दी खत्म हो चुका है वो गद्दी को हम लोग चेंज कर देते हैं, आपका जो पैर टेढ़ा हो गया वो पैर सीधा हो जाएगा एंड मूवमेंट वगैरह सीढ़ी चढ़ना उतरना जमीन पे बैठना भी सब आप कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको फाइनल चेकअप करना पड़ेगा कि

0: कि हमको देखना पड़ेगा कि सिर्फ अंदर के तरफ का गद्दी घिस गया है ना, पूरा घुटना खराब हुआ है, तो वो डिपेंड कर, अगर आपका दर्द है इतना दिन से, दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, तो इंजेक्शन वगैरह से भी ठीक नहीं होगा। हड्डी हड्डी घिसने से एक ही उपाय है, सर्जरी, और कोई उपाय नहीं है इसमें।
1: और मेडिसिन को कोई दर्द नहीं है,
0: कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेडिसिन ले सकते हैं, बट पेन किलर एंड ऑल से खाली टाइम, थोड़ा टाइम के लिए आपको दर्द ठीक होगा, परमानेंट कोई उपाय नहीं है, परमानेंट उपाय के लिए अब सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन वही घुटना बदलने का ना घुटना बचाने का ऑपरेशन करना है, वो तो एक्सरे एंड ऑल देख के पता चलेगा।
2: वो 70 इयर्स का उम्र का एज, इस उम्र में वो ऑपरेशन संभव है,
0: बहुत संभव है एज, वो एज में, इसलिए घुटना बचाने का ऑपरेशन बहुत छोटा ऑपरेशन होता है, तो वो एज के लिए तो और परफेक्ट है वो चीज, रिकवरी बहुत फास्ट है, सुबह ऑपरेशन होता है तो शाम से पेशेंट चल सकता है, एंड हॉस्पिटल में रहने का, फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है, जिस दिन सुबह ऑपरेशन किया नेक्स्ट दिन डिस्चार्ज कर देते हैं, फिजियोथेरेपी भी नहीं जरूरत होता है पेशेंट को, कुछ ब्लड चढ़ाने का जरूरत।
2: सर इसमें खर्च क्या ज्यादा रहता है, कितना खर्च आ सकता है?
0: खर्च अगर आप इस हिसाब से देखेंगे कि लाइफ में कितना प्रॉब्लम हो रहा है घुटने का अर्थराइटिस के लिए, तो उस हिसाब से वो खर्च का आपको मतलब लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा हो जाता है, तो वो खर्च आपको कुछ मतलब क्लियर नहीं होगा कि हाँ इतना खर्चा हुआ है। एक्चुअली जो इम्प्लांट्स हम लोग बैठाते हैं वो सब होता है, तो फॉरेन कंपनी नहीं है। सॉरी
2: जी,
0: एक्सरे देखने से पता चलेगा कि घुटना बचाने का ऑपरेशन कर सकते हैं ना, घुटना बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर घुटना बदलना भी पड़ता है तो आजकल का दिन में यह बहुत ही इजी ऑपरेशन है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है, 99 out of 100 पीपल में यह सक्सेसफुल होता है, आपका चलना फिरना घूमना बाहर कहीं प्रोग्राम में जाना, आप जो सब अभी नहीं कर पा रहे अब सब कर पाएंगे, कहीं से इनविटेशन आया है, कुछ फेस्टिवल है, आप कहीं जा नहीं पा रहे ऑपरेशन के
1: बाद, तो अभी तो चल सकता है, इधर उधर चल सकता है, लेकिन ऊपर चलना नीचे चलना ऐसा नहीं, ऐसे तो चल रहा है,
0: जितना चलेंगे उतना हड्डी घिसते रहेगा, तो धीरे धीरे ये और बढ़ते रहेगा। अगर आपका भी अर्ली स्टेज है, आप जितना सीढ़ी चढ़ना होता नहीं, या जितना चलते रहेंगे जितना करते रहेंगे, तो वो आस्ते आस्ते स्टेज 2 से स्टेज 3 स्टेज 4 जा सकता है, इसलिए अर्ली चेकअप या अर्ली डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है, कि आप पहले ही दिखाएं, जब पूरा हालत खराब हो गया एंड चलना बंद हो गया, बिस्तर पे बैठ गए, तब दिखाने से अच्छा है कि इसी स्टेज में आप दिखा डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: अभी तो ऐसा कंडीशन में नहीं है, अभी तो सर ऐसा चल रहा है, इधर उधर से चल सकता है।
2: डॉक्टर ले यहाँ भन्नु हुँदैछ कि तपाईले अहिले सुरुमै देखाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हो, तर पछि गएर तपाईँ जति हिँड्नु हुँदैछ हिँडुल गर्नुहुँदैछ, तर बादमा पछि गएर यो अझै बिमारी बढ्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो ठुलो हुनसक्छ, त्योभन्दा पहिले तपाईँले डक्टर देखाएर यसको चिकित्सा गरिहाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ दबाईले तपाईँले यहाँले भन्नुहुन्छ दबाईले तपाईँलाई कुनै त्यस्ता फाइदा हुँदैन, तपाईँको जुन चाहिँ दुखाइ छ दुखाइ कम गर्नु सक्छ, तर जिन्दगीभरको लागि यो रोगबाट तपाईँले मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ डक्टर साहबले भन्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले पहिला एक्सरे गरेर तपाईँको त्यो घुँडामा जुन समस्या छ त्यो समस्या हालेर कुन आधारमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने या के गर्नुपर्ने डक्टर साहबले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नु भइरहेको छ। यहाँले बुझ्नुहुँदैछ कुरा, हवस् त हामीसँग बात गरिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै
1: धन्यवाद।
2: र यहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो एकजना श्रोता, तो मै बात गर्नु सर, अगर हम लोग जैसे कि बहुत देर तक खड़े रहेंगे या खड़े होकर काम करेंगे या सीढ़ियों के ऊपर नीचे चढ़ने का या जमीन पर बैठ के बहुत लंबा समय तक बैठ के काम करने से क्या घुटनों में इसका असर पड़ता है क्या
0: ऑपरेशन के पहले?
2: ना ना ना, जब नॉर्मल होगा ना, अगर हम लोग हम लोग का प्रॉब्लम है ना कि हम लोग थोड़ी बहुत समय के लिए खड़ा होके काम करेंगे या सीढ़ियों के ऊपर ज्यादा चढ़ना पड़ेगा उतरना पड़ेगा या तो और जमीन में कोई ऐसा काम भी होता है कि जमीन में दिन भर लंबा समय तक बैठ के काम करना पड़ेगा, तो इससे क्या घुटनों में क्या असर पड़ता है?
0: पड़ता है, अगर सीढ़ी चढ़ना उतरना, चलने से उतना नहीं बट सीढ़ी चढ़ना उतरना या जमीन पे बैठना, बैठने से ज्यादा जमीन से जब आप उठते हैं तब तो नी पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो नी का जो कार्टिलेज या मेनिस्कस जो गद्दी होता है उसका घिसने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपको जरूरत ना है तो स्टेयर्स चढ़ना उतरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना

0: ना करे या जमीन पे बैठना ना करे।
1: एउटा फेरि फुनाई छ, हामी फोन रिसिभ गर्नेछौँ। हेलो हेलो
2: हेलो, नमस्कार हजुर।
1: नमस्कार हजुर, को बोल्नु भयो, कहाँबाट बोल्नु हुँदैछ?
2: हजुर, सुकिया पोखरीबाट आशा कुमार राई बोलेको हो।
1: हजुर सुकिया, भन्नुहोस् हजुर आशा कुमार राई।
2: हजुर, मेरो चाहिँ घुँडा दुख्छ कि कम्मरदेखि उँदो दुख्छ कि सर?
1: हजुर, यहाँ तपाईँ हिन्दी बोल्न सक्नुहुन्छ?
2: सक्छु
1: हजुर, हिन्दीमा बताउनुहोस् न। डक्टर साहब हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ?
2: हजुर
1: भन्नुहोस् न, तपाईँको बिमारी बताउनु। हेलो, तपाईँको बिमारी बताउनुहोस्।
2: हजुर, नसो त्यो एक्सरे गर्दाखेरि नसो के देख्छ भन्छ कि सर?
1: आप समझ रहे सर?
0: एक्सरे करके
1: वो जो नर्व्स का वो पेस हो गया।
0: अच्छा, घुटने में दर्द है ना? ना, ना पैरों में दर्द।
1: तपाईले घुटना कहाँनिर दर्द दर्द छ?
2: यो कम्मर देखि को हुन्छ। हजुर, कम्मर देखि को तल 45 सम्म नै दुख्छ।
1: ओ, समझ गए, नीचे नीचे से। हजुर
2: हजुर हजुर, 45 देखि को यो तल मा उही सम्म नै दुख्छ कि?
1: हजुर,
2: अन्त अहिले तपाईँको पहिला एलोपेथी खाँदै थिएँ, अहिले चाहिँ तपाईँको उयो खाँदैछु, होमियोपाथी खाँदैछु।
1: हजुर भन्नुहोस्।
2: हजुर, अन्त अहिले चाहिँ होमियोपाथी खाँदैछु, अलिकति आराम चाहिँ भएको छ सर। के कस्तो गर्नुपर्ने होला भनेर नि।
0: उम्र उम्र
1: तपाईँको उमेर बताइदिनुहोस् सर।
0: इसका जो मेन प्रॉब्लम होता है वो इस आपका जो कमर में ना, कमर का हड्डियों के बीच में एक स्पंज जैसा, जेली जैसा एक सामान होता है, और दोनों पैरों का नस कमर से उतरता है, तो बहुत टाइम क्या होता है वो जेली थोड़ा बाहर निकल के आपका नस को, नस पे दबाव डालता है, इसलिए आपको ये जो पैरों में दर्द है इसलिए। तपाईको खुट्टा पोल्छ?
2: हजुर, पोल्दैन सर, पोल्नु त पोल्दैन कि, तर दुखाई चाहिँ गर्छ, दुख्छ।
0: तो आपको जो करना है, तो दवाई से अगर आप ठीक है तो बहुत अच्छा बात है। जो मेन थिंग आपको दो तीन चीज करना चाहिए, एक है कि आपको सामने झुक के कुछ भी काम नहीं करना चाहिए।
2: अच्छा।
0: सामने झुक के जितना करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। सेकंड थिंग है, आपको भारी सामान एकदम नहीं उठाना चाहिए।
2: ओ, ये तो समझ में आया है। जी जी जी, हम तो बस्ती वाला आदमी है ना।
0: तो आपको तब अगर जो काम जितना आप कम कर सके ये दोनों चीज, उतना आपको आराम मिलेगा। जो एकदम मिनिमम है करना ही पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि ये सब काम करना है तो कमर में एक बेल्ट पहनी है, वो बेल्ट से आपको आराम मिलेगा जब भी आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली आप अवॉइड कीजिए, अगर उपाय है कि आप भारी सामान नहीं उठाएंगे एंड सामने झुक के काम नहीं करेंगे, तो उसको थोड़ा करना चाहिए आपको, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। जितना आप ये दोनों काम करेंगे उतना आपका पेन बढ़ेगा, तो इसलिए आप जब भी करना पड़े ये काम, थोड़ा बेल्ट पहनिए कमर में, और सोने के टाइम घुटने के नीचे पिलो वगैरह रखिए, तो उससे भी आपका नस को आराम मिलेगा थोड़ा, तो आपका पेन थोड़ा ठीक लगेगा आपको।
2: अच्छा,
0: दवाई जो खा रहे हैं आप, दवाई कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, कमर का जो एक्सरसाइजेस है वो थोड़ा करना चाहिए, उससे भी आपका मसल स्ट्रांग होगा, तो उससे भी आराम मिलेगा आपको।
1: धन्यवाद। हामीले यहाँ अहिले बात गरिरहेको थियौँ र सुके पोखरीबाट सर, ये मोटापी और जो घुटनुका दर्दके बिच क्या सम्बन्ध है?
0: एक सम्बन्ध तो जरुर है। हम लोग अगर वजन हिसाब से बात करेंगे तो हमारा शरीर का पूरा वजन घुटनों के होके ही जाता है, जब भी हम लोग खड़े होते हैं चलते हैं। एक किलो वजन बढ़ने से भी 6 किलो प्रेशर बढ़ता है घुटने में, तो इट्स 1:6 रेशियो में।
1: फोन रिसीव करो बोल
2: अलिक घुँडा दुख्छ, मलाई सुगरको बिमारी छ, हो सुगरको बिमारीले गर्दाखेरि चिसो खाँदा चिटोहरू के केहरू खानु मन छ, त्यही खायो भने घुँडा दुखिहाल्छ, त्यही कारण हो।
1: हिँड्दाखेरि दुख्छ कि दुख्दैन?
2: हिजो दुख्छ कि कम्ती दुख्छ कि

0: जब चलती थे
1: जब छिटो खायो ग्यारह गोली खाए पछि चाहिँ अलिक बेसी दुख्छ त हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आराम जस्तो हुन्छ
0: हो मिठो नै खायो दुसा किताब बगाएर खाने दर्द तपाईँको उमेर बताइदिनुहोस् एकपल्ट
2: 77 में आर्थराइटिस होने का एक चांसेस तो आपका है घुटने में आपके लिए आपका आर्थराइटिस होने का एक चांसेस है। एक चीज तो है आपको विटामिन डी की गोलियां खाना चाहिए, विटामिन डी का टेबलेट। विटामिन डी कम होने से ये दर्द थोड़ा हो सकता है। और सेकेंड थिंग है एक्सरे करा के एक बार कंसल्ट कराना चाहिए देखने के लिए कि आपका कितना लेवल ऑफ आर्थराइटिस है, मतलब कौन सा स्टेज पे है। अगर आपका एकदम अर्ली स्टेज है, स्टेज वन या स्टेज टू, तो बहुत टाइम क्या दवाई खा के इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। जो गद्दी घिस गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका जितना बचा हुआ है उसको हम लोग बचा के रख सकते हैं जितना दिन हो सके। लेकिन सीढ़ी चढ़ना तो थोड़ा कम कीजिए, सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कम कीजिए, और घुटने में थोड़ा बर्फ लगाइए उससे आराम मिलेगा। सीढ़ी चढ़ना उतरना कम कीजिए, अगर वेट ज्यादा है, बॉडी वेट ज्यादा है, तो थोड़ा वेट लूज करने का कोशिश कीजिए, उससे आपके घुटने को आराम मिलेगा।
0: तपाईलाई आर्थराइटिस भएको छ र तपाईले चाहिँ भिटामिन डी को ट्याबलेट दवाई खानु पर्छ, र त्यसले गर्दा तपाईलाई धेरै र एकपल्ट चाहिँ डाक्टर देखाएर
1: हजुर
0: होइन एकपल्ट डाक्टर देखाउनुहोस्। डाक्टर देखाएर
1: हामी नेपाली मान्छे बोल्दाखेरि चाहिँ नेपाली डाक्टरहरूले नेपालीमै बोलिदिनु भएदेखि चाहिँ रिक्वेस्ट
0: होइन हो हजुर, तर हामीले तपाईँहरूको सुविधाको लागि हामीले म यहाँ बसेर तपाईँलाई डक्टरको भनाइलाई मैले तपाईँले नेपालीमा बताइरहेको छु है। तपाईँले
1: हजुर
0: बुझ्नुभयो कुरा तपाईँले। त्यही कारण तपाईँ यो आर्थराइटिस भन्ने बिमारी चाहिँ तपाईँको स्टेज बाई स्टेज हुन्छ, अरे तपाईँको एक या दुई स्टेजमा छ भने त्यो छिटै दबाई खाएर जाती हुन्छ, यदि तिन चार स्टेजमा पुग्यो भनेदेखि यसको अपरेसन पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ डक्टरलाई जसाइहाल्नुपर्छ र अपरेसन गरिहाल्नुपर्छ भनेर
1: हजुर।
0: सुगर प्रेसर
2: कोही प्रब्लम नहीं है, उससे कोई इशू नहीं होता है। आजकल सब कुछ बहुत नर्मली कंट्रोल करके किया जा, बहुत सेफली किया जाता है, कोई लाइफ रिस्क नहीं होता।
0: सुगर र प्रेसरले चाहिँ के प्रभाव पार्दैन, त्यसलाई चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गरेर पनि त्यो जाती भइहाल्छ। तर तपाईँले चाहिँ सुधै आइसका आइस हुन्छ नि, बरफ चाहिँ गुडाममा लगाउनु भयो भनेदेखि तपाईँलाई धेरै आराम हुन्छ भनेर यहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीसँग बात गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँका समस्याहरू त सर यही जिस प्रकार अभी हम बात के वजन का
2: तो वही मैं बोल रहा था, अगर एक किलो भी वजन आपका बॉडी में एक किलो वजन बढ़ता है तो घुटने में 6 किलो प्रेशर बढ़ता है 1:6 रेशियो में। तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए 20 किलो का सूटकेस लेके चल रहे, तो ऐसा ही है, अगर आप 3-4 किलो लूज करते हैं तो वो सूटकेस आपका हाथ से उतर जाता है, तो आप सोचिए चलने में आपको कितना इजी रहेगा। इसलिए वेट मेंटेन करना इम्पोर्टेंट चीज है घुटनों का, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए वेट रिडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए।
0: सर ये जो घुटनों में जो दर्द होने पर व्यक्ति को किस प्रकार एक्सरसाइज करना पड़ेगा, किस और किस चीज से बचना पड़ेगा?
2: एक्सरसाइज मतलब कुछ भी, रनिंग, इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे हम लोग बोलते हैं, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सब एक्सरसाइज के तौर पे एकदम नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी आपके हड्डियां घिस रही है, जितना आप ये सब करेंगे उतना आपका और घिसते रहेगा, इससे प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। तो इसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस जैसे स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है, जिसमें आपको घुटने का भी कुछ असर नहीं होता है, बट वेट लॉस होता है एंड हेल्थ अच्छा होता है। एक है साइकिलिंग जैसे जिम में मिलता है या पेडल्स मिलता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आपका घुटने का जो मूवमेंट है पूरा मूवमेंट बरकरार रहता है एंड वेट लॉस होता है बहुत अच्छा से, प्लस आपका घुटने का जो हालत है कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है घुटने में। अच्छा, इसलिए रनिंग, जॉगिंग ये सब अवॉइड करके साइकिलिंग स्विमिंग पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
0: जैसे सर अभी हम लोग क्या करते हैं कि घुटने में अगर दर्द होगा तो हम लोग तेल मालिश करेंगे, जैसे कुछ कपड़ा वड़ा लगा के उसका थोड़ा गर्म करेंगे, सिकाई करेंगे, या कोई जैसे घर का घरेलू उपचार जैसे होते हैं हम लोग वैसे करते, तो इससे क्या

0: ये उपाय ये फायदा होगा क्या नहीं होगा?
1: ये उल्टा उपाय है एक्चुअली। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हड्डियाँ घिस रही है, कुछ भी चीज जब आपस में घिसती है तो ऑलरेडी उसमें गर्म हो जाता है वो चीज, तो आपका अंदर ऑलरेडी वो गर्म हो रहा है हड्डी घिसने के लिए,
0: नहीं करना चाहिए।
1: इसलिए आप जितना मालिश करेंगे या गर्म कुछ लगाएंगे तो उसमें वो अंदर की गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए बर्फ लगाना चाहिए। मालिश तो एकदम नहीं करना चाहिए, उल्टा बर्फ लगाना चाहिए, क्योंकि अंदर घिस के जो गर्मी पैदा हो रहा है उसको ठंडा करने से आपको ज्यादा आराम मिलेगा।
0: सर ये आप हम लोग का आप तो स्पेशली नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कहते हैं, तो ये किन परिस्थिति में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आवश्यक हो जाती है, किन परिस्थिति में?
1: जब आपका घुटना पूरा टेढ़ा हो गया है, आपको चलने में, रोज का जो काम करने में, बाथरूम जाने में, ऐसे घूमने में आपको तकलीफ हो रही है, आपके हड्डियों से, घुटने से आवाज आ रहा है हड्डी घिसने का, हड्डी फूल जाता है, पानी जमा हो जाता है, वो सब सिचुएशन में या तो नी रिप्लेसमेंट या तो हम, मैं जो इतना दिन देर से बोल रहा था, जो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या घुटने बचाने का ऑपरेशन का जरूरत पड़ सकता है। जब आपका डेली डे टू डे एक्टिविटीज में हैम्पर हो रहा है, आपका डेली डे टू डे एक्टिविटीज आप नहीं कर पा रहे, तो सर्जरी के बाद वो सब आप कर सकेंगे, उस टाइम पे आपको कर लेना चाहिए।
0: स्वस्थ जीवन मा आकाशवाणी खरसाङको यो स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा छौँ र यस समय हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक तथा जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट विशेषज्ञ डाक्टर रविशंकर माझी, र हामीले चर्चा गरिरहेका छौँ घोडाको दुखाइ, घोडा प्रत्यारोपण, रोबोटिक घोडा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया र उपचारका विकल्प, सावधानी र शल्यक्रियापछिको पुनर्स्थापना विषयमा हामीले यो विषयमा चर्चा गरेका छौँ। तपाईँको पनि यदि घोडाको कुनै समस्या छ र तपाईँलाई हिँड्नु असुविधा भइरहेको छ, तपाईँको दैनिक जीवनलाई यसले प्रभाव पारिरहेको छ, तपाईँलाई यो सिँढी चढ्नु, हिँड्नु र लामो समयसम्म उभिनु समस्या भइरहेको छ भने तपाईँको समस्या समाधान गर्न हाम्रो यस समय हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थोपेडिक तथा जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट डाक्टर रवि शङ्कर माझी, र तपाईँले हामीलाई फोन गर्नुपर्ने हुनेछ। यसको निम्ति हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 03542999317, फेरि याद गर्नुहोला 03542999317। यो नम्बरमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्याहरू यहाँ डक्टरसँग राख्न सक्नुहुन्छ। घुँडा सम्बन्धी हामी पनि डक्टरसँग यो विषयहरूमा चर्चा गरेका छौँ। सर घुट्नुमे दर्द होती है तो नी रिप्लेसमेन्ट गराना जरुरी है, क्या यह धारणा सही है?
1: दर्द सिर्फ दर्द के लिए नहीं, कौन सा स्टेज पे है वो देखना जरूरी है। अगर आपका हड्डी हड्डी घिस रहा है तो नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट छोड़ के और कोई उपाय अभी मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। इंजेक्शन वगैरह जो सब है जिससे वापस ग्रोथ का, कार्टिलेज ग्रोथ का एक बात चल रहा है, वो सब अभी ट्रायल स्टेज पे है। तो अगर ऐसा है कि एक्सरे में दिख रहा है कि आपकी हड्डी टू हड्डी टच है एंड घिस रहा है, तो नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन।
0: हम लोग देखते हैं कि सर अभी जितना एज होगा उतना ही लोग चलने में थोड़ा प्रॉब्लम बन गए, घुटनों का दर्द ही ज़्यादा समस्या बन रही है। अभी ये तो एक कॉमन डिजीज हो गया, अभी आ रहा है, तो ये इसका उम्र से क्या इसका असर पड़ता है कि?
1: हाँ, जैसे हम लोग एक नया गाड़ी खरीदते हैं तो टायर रहता है, चारों नया टायर रहता है, तो वो बहुत अच्छे से चलता है। जितना एज गाड़ी का होता है, 5 साल 7 साल, हाँ ले ली।
0: हाँ एक एउटा फोन हामी रिसिभ गर्छौं। हेलो हजुर।
2: हेलो
0: हजुर, को बोल्नु हुँदैछ?
2: म सिलगढीबाट बोलेको।
0: हजुर भन्नुहोस्, हजुरको शुभ नाम बताउनुहोस्।
2: बडे बोलेको, मेरो पेसेन्ट छ कि,
0: तपाईँको शुभ नाम बताउनुहोस्।
2: 42 वर्षको पेसेन्ट छ।
0: हजुर।
2: लेडी हो, लेडी
0: सम्झेँ। हिन्दीमा हिन्दीमा बताउनु सक्नुहुन्छ? बोल्नु सक्छ हिन्दीमा बोल्नु सक्नुहुन्छ?
2: हुन्छ हुन्छ।
0: हजुर भन्नुहोस्, यहाँ डाक्टर साहब हिन्दी
2: तपाईँ डाक्टर साहब
1: बोलियो।
2: मेरा पेसेन्ट है, मेरा बहन जैसा है, उसका उम्र है 42 लगभग। शी इज सफरिंग फ्रॉम रिमेटिक आर्थराइटिस सिंस 3-4 इयर्स।
1: ओके।
2: सीवियर पेन होता है, तो इसका क्या है वो स्टेज 2 बोला ऐसा ही लगा।
1: अगर दोनों नी में बहुत पेन,
2: स्टेज 2 लेवल
1: बोलिए, अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा है कि आपका नी पेन हो रहा है बहुत ज्यादा,
2: तो नहीं, आप बॉडी पूरा आता है,
1: हाँ, तो न्यूमेटॉइड

0: में पहले तो पेन कंट्रोल मेडिकेशंस हम लोग का यूज करना चाहिए। फोर्टी टू एज में कुछ भी सर्जरी कराना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने से हम लोग जो घुटने बचाने का ऑपरेशन या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट वी कैन नॉट डू दैट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एक ही उपाय होता है उनका, जो है नी रिप्लेसमेंट का। लेकिन 42 इयर्स में ये एकदम नहीं करना चाहिए, 42 इयर्स में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, तब उनको अपना लाइफ टाइम में दो तीन सर्जरी करना पड़ जाएगा। यस यस,
1: ट्रबल वो नी में नहीं है, ऑल में।
0: हाँ, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आपको मेनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। आइदर आपको एक प्रॉपर ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना पड़ेगा, एंड बेटर इफ यू कंसल्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट। द रूमेटोलॉजिस्ट इज स्पेशलिस्ट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जिसमें आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है या एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आ जाता है। इसके लिए जो रूमेटोलॉजिस्ट है, ये मेडिकेशन नॉर्मल पेन मेडिकेशन जैसा नहीं होता है, और ये मेडिकेशन देने के साथ साथ वो चीज पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ता है विद ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग। टाइम टू टाइम वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट। सो आई वुड एडवाइस यू टू कंसल्ट अ रूमेटोलॉजिस्ट जो आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट प्लान दे सके रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट के लिए।
1: एनीबॉडीज नेम सर,
0: सॉरी,
1: कैन यू एडवाइस मी एनीबॉडीज नेम
0: रूमेटॉलॉजिस्ट हियर इन सिलीगुड़ी? आई एम नॉट श्योर अबाउट रूमेटोलॉजिस्ट इन सिलीगुड़ी
1: राइट नाउ। एनी हॉस्पिटल सर?
0: सो
1: वेयर आई कैन फाइंड रूमेटोलॉजिस्ट?
0: I think Google will help you. I am not very sure. I don't know a name of any rheumatologist practicing in Siliguri, so I cannot help you.
1: But I think
0: you should Google it, and you will get someone or the other. I think you will get it. But preferable, you should get checked by a rheumatologist. That's what I would advise you.
1: Simple orthopedic, what
0: do? Better is rheumatologist. I am an orthopedic surgeon. I can, like, we also do this kind of treatments for rheumatoid arthritis. Yes, but preferably you take the medication and get her monitored through a rheumatologist. Maybe after 8-10 years when she starts having knee pain or anything, and when there is a need of surgery, then you can go to an orthopedician. But preferably you should get treated, you should take her to a rheumatologist, I would suggest.
2: यहाँ एकजना हाम्रो श्रोता हुनुहुन्थ्यो सर, हम लोग बात करे थे कि नी रिप्लेसमेंट क्या करना, ये
0: जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे नया गाड़ी खरीदते हैं तो चारों टायर नया होता है तो बहुत स्मूथ रन होता है, धीरे धीरे वो टायर जैसे घिस जाता है क्योंकि यूज के साथ साथ। तो सेम थिंग एज के साथ साथ हम लोग का जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड जो कार्टिलेज एंड मेनिस्कस जो गद्दी होता है वो भी एज के साथ साथ यूज होते रहते रहता है, तो वो पूरा खत्म हो जाता है। जब खत्म हो गया तब वो, इसलिए एज के साथ, अब किसी का वो 50 में हो सकता है जो जिसका ज्यादा काम है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क जो वो आदमी कर रहे हैं, एंड किसी का वो 80 में जाके खत्म हो सकता है। लेकिन जब भी खत्म होता है तो उपाय सर्जरी आता है।
2: सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बिना दवा या फिजियोथेरापी या लाइफ स्टाइल में बदलाव करने करके समस्या का नियंत्रित किया जा सकता है कि नहीं?
0: अगर स्टेज अर्ली स्टेजेस में है तो वो कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला वेट लॉस, सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करना है, जमीन पे बैठना कम करना है। बट अगर बोन ऑन बोन टच हो रहा है एंड स्टेज 3 या 4 में पहुंच गया है आर्थराइटिस, देन और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जितना डिले करेंगे वो प्रॉब्लम उतना बढ़ते रहते हैं।
2: सर, एक तो ये घुटने का जो दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये क्या चीज, क्या होता है और ये किन लोगों को लोगों में अधिक होता है?
0: ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकल टर्म है, जो मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि गद्दी खत्म हो जाने के बाद हड्डी हड्डी घिसता है, उसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस मेडिकल टर्म में बोलते हैं कि गद्दी खत्म हो गया, हड्डी हड्डी आपस में टकरा रही है एंड घिस रही है, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, और कोई अलग ये नहीं है।
2: अधिक नहीं है ना सर?
0: नहीं।
2: अच्छा अच्छा, तो सर अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद क्या मरीज फिर से सामान्य रूप से चल फिर सकता है कि नहीं?
0: एकदम।
2: इसके लिए कितना समय लग सकता है सर?
0: आजकल नया टेक्निक्स एंड इनोवेटिव टेक्निक्स आ गया है, तो बहुत प्रेडिक्टेबल है. जैसे मैंने बोला, आजकल हम लोग सुबह ऑपरेशन करते हैं तो शाम से पेशेंट चलना फिरना शुरू कर देते हैं.
2: अच्छा,
0: एंड हॉस्पिटल स्टे भी हम लोग एक ही रात रखते हैं, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं. इन टू वीक्स में पेशेंट बाहर जाना सब कुछ करना स्टार्ट हो जाता है.
2: अच्छा,
0: पूरा नॉर्मल होने में, पेशेंट को भूल जाने में कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, 3 to 6 months का

0: पीरियड लगता है जिसमें पेशेंट भूल जाते हैं कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है।
1: सर घुटने का ये प्रत्यारोपण बाद क्या व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है कि नहीं?
0: एकदम सब कुछ कर सकेंगे जो वो पहले करते थे आर्थराइटिस से पहले।
1: नी रिप्लेसमेंट के बाद लगाया गया कृत्रिम जो घुटने होता है आर्टिफिशियल जो घुटने होता है कितने वर्षों तक वो टिकता है?
0: जो अभी तक का जो लेटेस्ट इंपोर्टेड इम्प्लांट्स है वो 15 टू 20 इयर्स का एक लाइफ स्पैन बोलते हैं, बट हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में अपने फील्ड में देखा है कि 25 इयर्स 27 इयर्स तक फॉलोअप भी हम लोग देखते हैं कि अभी तक अच्छा है। तो इट डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 15 टू 20 इयर्स का एक लाइफ स्पैन जो कंपनी से या हम लोग का रेगुलर लाइफ में देखते हैं एक्सपीरियंस वाइज 15 टू 20 इयर्स है।
1: 15 टू 20 इयर्स में आराम से रहेगा ना सर। अभी हम लोग का सुन रहे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अभी बहुत चर्चा में हो रहा है अभी, वास्तव में ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट क्या चीज है, क्या है?
0: रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो चीज होता है, जो हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जन ही करते हैं, बट रोबोट एक असिस्टेंट है।
1: अच्छा।
0: जिसमें हम लोग रोबोट से देख पाते हैं कि जो हम लोग कट्स कर रहे हैं, हम लोग का जो मेजरमेंट्स है वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट्स होता है, तो वही चीज हमें रोबोट हेल्प करता है। अच्छा। सर्जरी सर्जन ही करते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी का ड्राइवर इम्पोर्टेंट है, गाड़ी कौन सा है इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए सर्जरी सर्जन इम्पोर्टेंट है। वो गाड़ी आपको मारुति 800 या BMW कुछ भी हो सकता है, तो वैसे ही आपका रोबोट एक असिस्टेंट है सर्जन के लिए, जो सब कुछ परफेक्टली एक्यूरेटली करने में और मदद करता है।
1: तो धन्यवाद। समय 5:44 गइसकेको छ र यहाँहरूले हामीलाई फोन गरेर हामीसँग केही समय दिएको छ। यहाँले यहाँको जुन घोडाको दुखाइ र घोडा प्रत्यारोपण अनि रोबोटिक घोडा प्रत्यारोपण शल्यक्रिया उपचार र जति पनि घोडाको तपाईँको समस्याहरू छ त्योमाथि तपाईँको कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग यो घोडाकै रोग सम्बन्धी अर्थोपेडिक डाक्टर हुनुहुन्छ र जरा उहाँ विशेष जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर रविशंकर माझी यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँले अझै पनि समय छ, अब हामीसँग लगभग 15 मिनट हामीसँग समय रहेको छ। यहाँले तुरुन्तै फोन उठाउनुहोस् अनि हामीलाई फोन गर्नुहोस्। तपाईँको फोनको प्रतीक्षामा छौँ र हाम्रो फोन नम्बर फेरि एकचोटि नोट गर्नुहोला 0354299931। फेरि याद गर्नुहोला 0354299317 यो नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गरे तपाईँको समस्या डाक्टर साहबसँग राख्न सक्नुहुनेछ। र सर यही रोबोटिक नी रिप्लेसमेन्ट र ट्रेडिसनल ये कन्भेन्सनल नी रिप्लेसमेन्ट के बिच के मुख्य अन्तर क्या है?
0: मुख्य अंतर वही है, पहला जो ट्रेडिशनल है उसमें सिर्फ सर्जन कर रहे हैं, तो जो एक्यूरेट है वो हम लोग आंख से देखते हैं कि एक्सपीरियंस वाइज वो हम लोग डिसाइड करते हैं। रोबोटिक में वही एक्सपीरियंस को एक नंबर मिल जाता है एंड एक्यूरेसी मिलता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि 5 mm काटना है, तो रोबोट वो हेल्प करता है कि हम 5 mm ही काटे, वो 5.1 mm भी ना हो। तो वही हेल्प आता है रोबोटिक रिप्लेसमेंट से, जो नॉर्मल सर्जरी में मतलब ट्रेडिशनल सर्जरी में सिर्फ सर्जन करता है अपने हिसाब से।
1: सर्जन का असिस्टेंट काम
0: रोबोट है,
1: असिस्टेंट
0: रोबोट है। सर्जरी सर्जन ही कर रहा है, रोबोट जाके असिस्टेंट का काम कर रहे हैं।
1: सर ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के मुख्य फायदे क्या क्या है?
0: वही एक है एक्यूरेसी, रिकवरी थोड़ा फास्ट होता है।
1: तो हम लेके फोन रिसीव करेंगे पहले। फोन सम्पर्क हुन सकेन हामी उहाँका फोनका। जी बोली सर उसका।
0: हाँ, तो उसमें एक्यूरेसी बढ़ता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में, रिकवरी थोड़ा फास्ट है, तो यही मेन थिंग है। ऐसे डिफरेंस मेनली सर्जन का है। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जो है आपका ब्लड लॉस कम होता है, थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ता है।
1: हेलो हेलो
2: अजय
1: धनकर जी बोलिए।
2: सर मेरी एक प्रॉब्लम है, जो मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई थी 2018 में।
1: स्पाइन की सर्जरी
2: हुई थी सर। हाँ,

0: अमिताभ मिश्रा नाम के एक डॉक्टर है, संजीवी मिश्रा संजीवी नर्सिंग होम में बैठे हैं, वो किए थे।
1: Okay.
0: उसके बाद से ना मेरी स्पाइन की ना प्रॉब्लम दर्द रहता है और मतलब यूरिन को ज्यादा से कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए आप रेडियो में बताए, मैं सुन रहा हूँ आपको।
2: फिर एक बार बताना क्वेश्चन
1: क्या बोले लास्ट
0: वाले। सर मैं बता रहा हूँ क्या, मैं 2018 में मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई थी
1: यूरिन।
0: यूरिन को मैं ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर सकता, उस आधे घंटे से ज्यादा तो कंट्रोल रख ही नहीं सकता। अगर तो रात में सोता हूँ तो सुबह तक तो मेरे बिस्तर गीला हो जाता है, मेरे कमर के नीचे ना मुझे रबर क्लॉथ बिछा के रखना पड़ता है।
1: ओके,
0: समझ गए होंगे मेरी बात?
1: जरूर जरूर जरूर समझ गया।
0: तो इसको
1: तो जब होता है ना स्पाइन सर्जरी हम लोग करते हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू द स्पाइनल। हाँ मैं बता दे रहा हूँ, जो जब स्पाइनल सर्जरी होता है तो हम लोग बहुत स्पाइनल कॉर्ड के बहुत नजदीक ये सब ऑपरेट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से प्रेशर हटाने के लिए। तो आइदर आपका कंप्रेशन जो था वो पूरा पूरी ट्रीट नहीं हुआ है, जो हम लोग डिकम्प्रेशन बोलते हैं, मतलब।
2: हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाजिर
3: हाजिर, मैं सिक्किम सोरेंग वेस्ट सिक्किम बोल रहा हूं।
2: हाजिर बोल
3: रहा हूं, बोल रहा हूं। हाजिर मेरे अलग से समस्या थी,
2: हाजिर
3: घुनामा अलग बहुत को प्रॉब्लम अंत खुट्टा को अलग सुमिर का गांठ हार्ड बासुरी।
2: हाजिर
3: त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ होला भनेर डाक्टर साहब सल्लाह
2: गर्नु। मेरो घुट्नुमै गाउट का प्रब्लम है, थोड़ा वो जैसे गार्ड वगैरह।
1: तो आपका यूरिक एसिड टेस्ट कर चुके हैं?
3: हाँ गाड़ी है,
1: यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपका
3: थोड़ा थोड़ा, तो दिखा रहा है लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहा है ठीक है, यही बोल रहा है।
1: अगर यूरिक एसिड थोड़ा ठीक है, मतलब एज कितना है आपका?
3: मेरा तो 45 है।
1: ओके, यूरिक एसिड के लिए ये घुटने में दर्द या पैरों में दर्द, स्मॉल ज्वाइंट्स में दर्द हो सकता है, तो इसके लिए आपको मेनली एक बार यूरिक एसिड अच्छे से ट्रीट करना, यूरिक एसिड टेस्ट करना है। अगर बड़ा हुआ है तो उसके लिए मेडिकेशन लेना है, और मेनली जो प्रिवेंटिव वेज है उसमें आपको रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा पल्सेस वगैरह अवॉइड करना चाहिए, दाल एंड ऑल प्रोटीन फूड ज्यादा लेंगे तो उसमें वो टूट के यूरिक एसिड बनता है, तो उसमें आपका यूरिक एसिड बढ़ जाने का चांसेस है, पेन बढ़ने का चांसेस है। एकदम मस्ट रेड मीट एकदम अवॉइड करना चाहिए, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। घुटने में दर्द आपका यूरिक एसिड के लिए हो सकता है, या तो आपको अर्ली स्टेज ऑफ अर्थराइटिस अगर हुआ है तो उसके लिए भी हो सकता है। आप कुछ अगर चोट लगा है या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या इसमें कुछ इन्वॉल्व है, तो बहुत टाइम हम लोग का गद्दी भी, जो दोनों हड्डी के बीच में गद्दी या मेनिस्कस होता है, वो भी थोड़ा फट जाता है, तो उसके लिए भी एक दर्द होने का चांसेस है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक कंसल्टेशन करके वो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि आपका गद्दी फटा है कि नहीं है, या तो आपको अर्ली अर्थराइटिस है कि नहीं है। तो इसके लिए आप थोड़ा अभी मतलब रेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्रेसफुल स्क्वाटिंग, सिटिंग ऑन द फ्लोर या स्टेयर क्लाइंबिंग, ये सब थोड़ा अवॉइड कीजिए। वो थोड़ा ये सब छोड़ के नॉर्मल वॉकिंग एंड ऑल कर सकते हैं, उसमें आपको आराम मिलने का चांसेस है।
3: तो घुटने के जो नीचे जो बड़ा आमला होता है ना, उसके बाद में जो फुला है दोनों पैर में,
1: घुटने के नीचे जो
3: जो आमला है ना, बड़ा बड़ा आमला, साइड का आमला, उसका पे बड़ा बड़ा गांठा है
2: जो पैर के पैर में, जो
1: फिंगर्स में ना, तो वो गाउट के लिए हो सकता है, वो गाउट के लिए होता है। तो आपको यूरिक एसिड टेस्ट करके अच्छे जगह से वो एक बार चेक करना चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ने से वो हाई चांसेस है कि वो यूरिक एसिड के लिए होता है। ठीक है, गाउट का वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स है कि वो फुट में वो चीज होता है जो आपको फूल जाता है।
3: ठीक है,
1: और रेड मीट अवॉइड कीजिए डेफिनेटली। नहीं खाना है, एकदम नहीं खाना है।
2: धन्यवाद यहाँलाई। र सर हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या रोबोटिक सर्जरी हर मरीज के लिए सही है?
1: अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट लगता है, रोबोटिक करे या ट्रेडिशनल करे, बात एक ही है।
2: अच्छा, तो एक फोन आएगा। हेलो
4: हेलो,
2: हाजिर मनोज, क्यों कहाँ बड़े बोल रहे हो?
4: मलाई पनि एउटा यो भन्नु थियो कि मेरो पनि दुईटै घोडा यस्तो

0: अगाडिपट्टि आएको छ क्या, सुस्तो भएर
1: हो ये जो नीट में है ना वो निकल के थोड़ा आगे आगे जैसे एक पिन जैसे निकल रहा है
0: आगे सीधा सीधा सीधा नहीं होता है मेरा पैर और घुटना ना थोड़ा आगे तरफ के आया है, साइड नहीं हुआ है लेकिन आगे तरफ के लेग पॉइंटेड हो गया है, वो सीधा हो ही नहीं वही होता ही नहीं है, बहुत एक्सरसाइज
2: किए सर हमने,
0: डॉक्टर भी बहुत दिखा चुके हैं।
2: एज कितना है
0: मेरा?
2: मेरा
0: 59।
2: अगर आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है मतलब आपके घुटने में ना, हम लोग का जब अर्थराइटिस होता है तो एक्स्ट्रा हड्डियां बनती है घुटने में, तो अर्थराइटिस में एक्स्ट्रा हड्डी बनने के लिए अगर आपका घुटने के पीछे एक्स्ट्रा हड्डी बनता है तब आपका घुटना सीधा नहीं होता है। एंड जो आपका जो लग रहा है ना कि घुटना आगे आ गया, वो मोस्टली आपका जो ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं हम लोग अर्थराइटिस में, वो एक्स्ट्रा हड्डियां के लिए आपको लग सकता है कि ये घुटना आगे आ रहा है, बट द थिंग इज कि अर्थराइटिस होने का ही चांसेस आपका मैक्सिमम है, जो मुझे लगता है स्टेज 3 या 4 अर्थराइटिस हो सकता है अगर आपका घुटना पूरा सीधा नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में
0: एक्सरसाइज करके देखिए डॉक्टर साहब। मैंने एक्सरसाइज करके लेफ्ट नी को तो सीधा थोड़ा किए हैं लेकिन राइट तो होता ही नहीं।
2: हाँ, अगर वो फिक्स्ड हो गया तो आपको एक्सरे करके दिखाना पड़ेगा। स्टेज 4 अर्थराइटिस में ये हाई चांसेस है कि बहुत टाइम स्ट्रेट नहीं होता है, तो फिर हमको जब सर्जरी करते हैं तब उसको सर्जरी के द्वारा ही स्ट्रेट करना पड़ता है। पीछे बहुत सारा हड्डी अगर हो गया है पूरा स्टेज,
0: नहीं पीछे कुछ नहीं है, एकदम क्लीन है मेरा। एक दिन हम काम कर रहे थे तो अचानक से एक साइड का हड्डी ना एक साइड में चढ़ गया था, तो नॉक नहीं हो गया है वैसे।
2: नॉक होने का वन ऑफ द मेजर रीजन ही वही है कि अर्थराइटिस होता है, तो इसलिए आपको एक एक्सरे करके चेक कराना चाहिए। अगर चेक करके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं है तो वो ठीक अपना उपाय बताएंगे, बट स्टेज 4 अर्थराइटिस ही हाई चांस है आपका नी के लिए, इसीलिए।
0: वैसे आपका ये क्लिनिक कहाँ पर है सर?
2: मेरा पुमेश हॉस्पिटल सालूगाड़ा।
0: ओ सालूगाड़ा,
2: हाँ
0: सिलीगुड़ी में।
2: आप कहाँ रहते हैं?
0: हम तो वैसे हम रहते हैं झारखंड में रांची में, लेकिन हम एक रिलेटिव के यहाँ आए हैं बंगाल में। तो हमको एक मेरा चाचा है वो बताया कल कि इतना बजे तुम प्रोग्राम सुनना, डॉक्टर साहब से बात भी कर लेना, ऐसे बोले थे वो चाचा ने एस के क्षेत्री महाराज ने।
2: तो आपको जो भी नजदीकी जो भी आपको ऑर्थोपेडिशियन अच्छा मिलता है आप एक बार दिखाइए, स्पेशली नी मतलब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन मिलने से उनको एक
0: नहीं, हमने तो बहुत दिखाया बहुत। मेरा 2002 में ना एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट नी में एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगा था। उसके बाद भी तो हम तो वर्किंग वुमन है, सिंगल मदर, तो हमने बहुत दिखाए, बहुत ट्राई किए, लेकिन धीरे धीरे 2022 से ना ये आगे तरफ आ गया।
2: वही तब आपको प्रॉपर जगह पे प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है, थोड़ा गूगल रिव्यू देख के लीजिए, ठीक है?
0: वही आपका अभी हम पूरा सुन रहे थे ना, और ये जो भैया है साथ में वो कर रहे थे मतलब नेपाली में बता रहे थे सबको, लेकिन हमको हिंदी भी आता है, नेपाली आता है, इसीलिए आपको
1: धन्यवाद यहाँ हमीसंग बात कर
0: रहा।
1: हमीसंग समय भैस अब अमय हमीसंग अब बेसी सर जाते जाते आप क्या सुझाव देना चाहते लोगों को
2: सुझाव ये है कि आपका वेट नंबर 1 आपका वेट कंट्रोल में रखिए, एज के साथ साथ आपको वेट रिडक्शन करने से आपका घुटना बिना ऑपरेशन का अच्छा रहेगा। सीढ़ी चढ़ना उतरना, जमीन पे बैठना, स्क्वाटिंग करना, ये सब चीजें अवॉइड करना है। साइकिलिंग ज्यादा ज्यादा कीजिए, अगर अवेलेबल है तो स्विमिंग करने का कोशिश कीजिए, ये सबसे आपका नी थोड़ा हेल्दी रहेगा।
1: आदरणीय श्रोता, अब हामी आजको यो स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको यहीँ समापन गर्न लागिरहेका छौँ र आजको यो फोन इन कार्यक्रमलाई सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नका निम्ति हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू पवन थुक्पा अनि सेल ब्रामीणलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै, अनि हाम्रा उद्घोषक दीक्षण यजन अनि प्रसारण सहयोगी पेमा साङ्वेलाई पनि धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट डाक्टर साहबको बहुत बहुत धन्यवाद
2: थ्याङ्क्यु
1: भन्दै अब आजको कार्यक्रमबाट म उमेश कार्की डोली पनि बिदा बोल्छु। नमस्ते।

0: कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: यह प्रसारण हो आकाशवाणी खरसाङको। अब रिले गरी सुनाउनेछौ आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको प्रादेशिक समाचार।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: श्रोता भी समय पे
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर

0: 1-800-14-16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
3: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
4: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन

0: लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और अपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
2: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
1: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
3: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
1: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
4: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री

0: मंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 2 दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर की एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता है, तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे

0: के लिए वर्षों इंतजार करे। क्या हो जब उसे कानूनी दांव पेच या कागजी कार्रवाई में लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़े। इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026। क्या है इसके प्रावधान, या फिर यूं कहें कि क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा और एमएसएमई सेक्टर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ेगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भरत खेड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: नमस्कार।
0: यहीं से शुरुआत करते हैं। 2006 में एमएसएमई एक्ट बना, 20 वर्ष यानी दो दशक बीत गए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी।
1: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए, और इन 20 वर्षों में कई ऐसे चेंजेस आए जिसके लिए ये आवश्यक हो गया था कि हम इस एक्ट में संशोधन करें। और 20 वर्षों बाद जब संशोधन होता है तो वो बड़ा स्वाभाविक है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे, और हमें ज़रूरत लगी कि आज के युग के साथ उनको भी आगे बढ़ाया जाए। और कुछ चुनौतियां रहीं हमारे एमएसएमई क्षेत्र में जो हम अनुभव कर रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, उनसे भी निपटारा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हम एक्ट के प्रोविजंस के अंदर प्रावधानों में अमेंडमेंट करें। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा, 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
0: कई सारी चुनौतियों के समाधान को खोजने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। एक एक करके अगर आपसे समझना चाहें तो मध्यस्थता के लिए 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो पहले मध्यस्थता में उसे भेजा जाएगा, जिसे मीडिएशन भी कहते हैं, और 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या राज्यों के साथ मिलकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, कोई एक कार्य प्रणाली बनाई जा रही है जिससे 90 दिनों की समय सीमा के अंदर उस मामले को निपटारा किया जा सके।
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज़ की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है, इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज़्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो MSEFCs हैं जहाँ पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं क्योंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है। चूंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एक ODR पोर्टल है हमारा जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कंफर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी, और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, इस समय सीमा को निर्धारित करने

0: से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
1: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ये साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इनवॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
0: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की थी, और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शंस बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शंस कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी MSME से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इनवॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे MSMEs को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है, और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। CPSEs को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हों और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन MSME से संबंधित जो इनवॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: यहाँ एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या MSME मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है, और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें। और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे MSMEs के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी, और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है, अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया है उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं MSMEs के फेवर में, अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस MSME को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग MSME से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य

0: अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे। शायद इस बात से भी घबराते हो कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी, तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया। इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं और मैं ये समझता हूँ इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब चूंकि उद्यम पोर्टल का प्रावधान एक्ट में ही किया गया है तो ये फॉर्मलाइजेशन की हमारी जो कैंपेन है ये और बेहतर रूप से चलेगा और इसमें हम सैचुरेशन प्राप्त करेंगे।
1: आपने अभी कैंपेन का जिक्र किया, ये नए प्रावधान से एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को रूबरू कराने के लिए किस तरह के कैंपेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की दिशा में सोचा जा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि कई सारे मंत्रालय एक्सपोज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वेबिनार करते हैं और जहां पर बहुत सारे छोटे बड़े उद्यमियों को मिलाकर विशेषज्ञ उनको बारीकियां समझाते हैं, क्या इस तरह की भी कोई योजना है?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया इससे पहले भी फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा, सभी एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया और अब चूंकि बिल पारित हो गया है आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे। हमने अभी तकरीबन 5 करोड़ मैसेजेस एक ही दिन में सभी एमएसएमई को डायरेक्टली भी भेजे हैं, ईमेल्स भी भेज रहे हैं और एसोसिएशंस के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेच समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: देखिए, समन्वय तो इसमें हमेशा राज्यों के साथ रहता ही है लेकिन इस संशोधन के अंदर एक एक्ट में भी प्रावधान किया गया है, अगर कोई सेटलमेंट होता है मीडिएशन के आधार पर या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए, वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए, उसकी वसूली सुनिश्चित करने के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। और ये हमें राज्यों से ही फीडबैक भी आया, राज्य सरकारों से, और मैं ये समझता हूँ ये जो प्रावधान है ये आने वाले समय में और प्रभावी रूप से काम कर पाएगा।
1: एक और इसमें व्यवहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था, क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी, उसको अब सरल कर दिया गया है। उसमें ग्रेडेड फाइन, जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1,000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये

0: ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी। आज का जमाना AI का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें AI भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी, कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी AI भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर, आर्बिट्रेशन के अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी, जो कि मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो MSCFCs हैं हमारी, जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है, उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में कितनी महिलाओं के हैं। ये सारी जो सेग्रीगेशन है, ये सारा जो एनालिसिस है, ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है MSME ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में MSME का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में। तकरीबन 38 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में हमारे MSMEs जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी MSME चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, Tier 2 और Tier 3 वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाए और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे MSME क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और मैं ये समझता हूँ हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढे वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने अभी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या MSME जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, AI, IoT, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर। और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशंस की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिव साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया। और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में। और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहां बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहां कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत, अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, DPIIT जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और GI टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और GI सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर MSMEs सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने MSME चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं। और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम GIs थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब GIs ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं। और आने वाले समय में भी हमने MSME चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि GI लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है, जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की, उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ MSEFCs भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और एमएसएमई, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी, 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा

0: सकता है?
1: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी जीडीपी में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% जीडीपी का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान में रखकर के ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमएसएमईज हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे। उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हों, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हों, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं एमएसएमई चैंपियंस के तहत, जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे।
2: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
1: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़ कर के भविष्य में क्या करना है, वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढें, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढें, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से,
2: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले वर्षों में और तरक्की करेगा। भरत जी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
3: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी
1: बस कुछ ही पलों में

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सामिन, कहते हैं प्रेम एक ऐसी आग है जो अदृश्य रूप से जलती है, एक घाव जो दर्द करता है पर महसूस नहीं होता। यूं तो प्रेम करने का दावा हम सभी करते हैं, लेकिन अपने देश की माटी से, अपनी मातृभूमि से जिसने प्रेम किया, उन्हें आज हर कोई सैल्यूट कर रहा है। गीतकार की कलम में इतनी ताकत होती है कि उनकी कलम से निकले गीतों से वतन परस्ती का सोया हुआ जज्बा जाग उठता है। आजादी के परवानों की जिंदगी में मकसद को बयां करता ये गीत आज भी सर चढ़कर बोलता है। गीतकार रामप्रसाद और प्रेम धवन ने इसे कलमबद्ध किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।

नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बच्चे की सरल और देश के प्रति अटूट प्रेम को दिखाता ये गीत हम सभी ने सुना है। मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, देश की संस्कृति और पहचान को दर्शाता ये प्यारा

की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। सचमुच शकील बदायूनी का लिखा ये गीत केवल एक गीत नहीं था बल्कि एक आंदोलन था। आंदोलन, उनकी कलम में हर वो रंग शामिल था जिसकी समाज को दरकार है। इन गीतों को सुनकर ही देश के जाबाज सैनिकों के खून में एक उबाल सा आ जाता था। शकील साहब द्वारा रचित ये गीत नए आशावाद को प्रस्तुत करने वाला जैसे देशभक्ति गीत ही बन गया था।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अपनी मिट्टी और अपने देश के प्रति अथाह मोहब्बत ही हमें देशभक्त बनाती है। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती जैसे कालजयी गीत रचने वाले गीतकार गुलशन बावरा कितने गहरे देशभक्त होंगे, ये गीत सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है। माँ धरती के गौरवगान से जुड़े गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गीतकार इंदिवर की कलम से निकला ये गीत भारत की संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है। प्रेम, सत्य और एकता की बात करता गीत, भारतीयों का अपनी जड़ों पर गर्व करता ये गीत, अपनी मातृभूमि से प्रेम करने का आग्रह करता गीत। इंदिवर साहब के गीतों की तासीर आज भी मोहब्बत बिखेरे हुए है, लेकिन जब उन गीतों से मिट्टी की खुशबू आने लगी तो जिंदगी और मौत का फर्क वो यूं समझा गए हमें। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।

गीतकार साहिर लुधियानवी ने भी मातृभूमि को माँ की तरह प्यार किया। उनकी कलम ने भी देशभक्ति की भावना के बीज बोए। घनघोर अंधेरे के बीच भविष्य की चमकीली किरणें बिखेरते रहे उनके कालजयी गीत। साहिर ने दुनिया को बहुत कुछ कह दिया। वे लिखते हैं, रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कहते हैं, सच्चा देशभक्त अंजाम की परवाह किए बिना सच बोलता है। वही साहिर गीतकार ने कहा, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, इश्क आजाद है हिंदू न मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क।

देश प्रेम और माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कोई इन रणबांकुरों से सीखे। अपनी मोहब्बत का इजहार एक शहीद ये कहकर करता है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। जंग के मोर्चे पर तैनात एक फौजी के जज्बातों को गीतकार कैफी आजमी ने बहुत खूबसूरती से कागज पे उकेरा। अगर ये गीतकार ये शायर केवल इश्कबाजी पर ही अटके रह जाते तो शायद उनकी कलम ये विद्रोह कभी ना कर पाती, ये गीत कभी ना उकेर पाती।